इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम और लो हाजिर है और शेजियस लेकर शो व्हाट्सएप।

हाय मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। दोस्तों रेडियो चैनल 90.4 एफएम एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्स अप। फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चैनल के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे।

0: Jesus. Kom her, ja.
1: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update.
2: रेडियो चैनल 90.4 एफएम एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में ब्रदर आज का वेदर और इस फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज हम पहुंचा रहे हैं आप तक जो भी है वेदर की कहानी क्योंकि जानी रेडियो चैनल एंड वी केयर फॉर यू
1: रेडियो चिन्ह
2: आज का मौसम क्या कहता है बता रहा हूँ आपको। आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 19 डिग्री

0: जिस और वही अगर हम बात करें तो मौसम काफी ठंडा है और सुबह सुबह ताकत देता अंडा है, तो मियाँ पानी की बोतल उधर रखिए और आप जाइए, हम ले लेंगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कहना है आपका भी, क्योंकि पानी पीने से बहुत गुरेज करते हैं लोग, त्रेशीशन लोग चवा तेरी मस एंड दे एंड अप लाइक ओह हलियन छिदा कम रश तक। सो गुड माय डियर, ठंड है उसके चलते भी आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है।
1: रेडियो चिना वेदर अपडेट।
0: आज मौसम बादलों से भरा होगा, गरज बरस की भी संभावना है। सुबह सुबह युति बद्रायोस गैरिद्रायोस रसखंडा पोकोस तैति पे रुद टेक एंड आई रियलाइज कि मौसम आज कैसा होने वाला। वैसे आपको तो बहुत पता चल ही गया होगा क्योंकि वेदर मैन ने तीन दिन की वेदर प्रेडिक्शन पहले ही बता दी थी दैट इट इज गोइंग टू बी बारिशों वाला मौसम। यूवी इंडेक्स 0 पर, ह्यूमिडिटी 86%, विंड स्पीड भी 0 पर, विजिबिलिटी 1 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 6:36 पर, आज का सनसेट जी हाँ हो रहा है 5:59 पर। और रेडियो चिनार के साथ आप धमाल तो करेंगे ही, याद रखिए 8899-04904 इज द नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। मैं हूं जॉग्स्यूस, मजदार शो व्हाट्सएप, हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार, मेरी जान से रिएक्ट धड़का दे रहा।

0: Zeus. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: Reaching out hardest frequency पर वायरल ऑन व्हाट्सएप वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल होता है हम पहुंचाते हैं आप तक, क्योंकि कहत ज्ञानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जाने वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाता है। जी हाँ, किसी भी काम के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, किसी भी पैशन के लिए कोई उम्र नहीं होती, और ये समझाया है 6 साल लड़की ने जो कि है जापान से।

यहाँ यो जापानी गुड़िया कतई म्यूजिक की पुड़िया बन के उभरी लुमी मियादा जापान से, जो बन चुकी है यंगेस्ट फीमेल क्लब डीजे। जैसा कि मैंने कहा, 6 साल की उम्र है खाली। इंटरनेट पे लोग कर रहे हैं तारीफ, बजा रहे ताली की, मेहरबान कदरदान देखिए किस तरह से 6 साल की लड़की अब खो रही है म्यूजिक की खिड़की। लोग है हैरान परेशान घमासान, कह रहे हैं कि तारीफ तो बनती है क्योंकि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने इसे म्यूजिक सिखाया। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम, मैं हूं जॉक्स, मेरी जान से हुक्ड धड़काता रहा।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिटार 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, करेज डजंट ऑलवेज रोर, समटाइम्स करेज इज द काइट वेज एट द एंड ऑफ द डे, सेइंग आई विल ट्राई अगेन टुमारो। संतुलन अपना खोने लगा और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन से धड़काते रहा।
5: लव से होने लगी, मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पीए से है रखे जो घूटों से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी, मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी, मेरे गोयाट के बैक कानों में टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी, टिप्पणी पे न करू टिप्पणी, तेरे जैसा कहां से मैं बस चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी प्यार तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी जलता है उनको मैं छाटता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, दिन रात लगातार मैं जागता फिरूं, उसके साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है, मैं नाचता फिरूं।

हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: Zeus. Kaan Aya.
1: दोस्तों रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप मैं हूं आपका साथी
2: जस
1: जी हां व्हाट्सअप शो और व्हाट्सअप शो में वक्त हो चला है आज का टॉपिक अब तक पहुंचा दिया जाए जी हां जिम जाना मसल बनाना ये तो आम सी बात है लेकिन खासम खास बात है इस बात पर भी आएंगे लेकिन उससे पहले की बात ये है कि हमें आपका साथ है क्योंकि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी जी हां साथ चाहिए तो साथ ही साथ बढ़ाना और हाथ भी बढ़ाना और साथ देते हुए रेडियो चुनार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि आप ही धड़काते हैं हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार तो मेरे यार फोन उठाओ 888-9904-904 आप डायल करो व्हाट्सएप करो या टेक्स्ट मैसेज करो बस ये है कि दिलों के तार दिलों से जोड़ दो आतिफ जुड़े हैं हमारे साथ लिखते हैं आतिफ अब तो आदत सी है नहीं मतलब ये आतिफ नाम सुनकर ऐसे इमोशंस आ जाते हैं बट आतिफ ने कुछ खास लिखा है लिखे है सर आई मिस्ड यू अ लॉट आई मिस्ड यू टू माई ब्रदर लाइक क्या लगता है आपको हम मिस नहीं करते आपको हम आपके नाम मतलब तेरे नाम का टैटू बनवा लूं रे आतिफ बट ये है कि हम माइक से ही आपसे बतियाते हैं और जाहिर सी बात है जब आप मिस यू या लव यू बोलते हैं तो वी फील इट हियर सो आतिफ आई मिस्ड यू अ लॉट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग बैक यूं ही जुड़े रहे यूं ही प्यार देते रहे और शिवम हमारे साथ जुड़ी है लिखती है सर गाने की रिक्वेस्ट करनी थी देखिए गाने की रिक्वेस्ट जो है म्यूजिक ऑन डिमांड में होती है आरजे दीवा के साथ
2: yes.
1: फिलहाल के लिए आपको डीएम भी करना है तो डीएम भी कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर आइए जॉक्ज्यूस के नाम से मिलूंगा JOCKEUS मेरी आईडी पर डीएम करके भी आप हो सकते हैं शो में शामिल लगा सकते हैं व्हाट्सएप शो में डुबकी सो कमिंग बैक टू द पॉइंट आजकल सब फिटनेस की बात करते हैं जिम अगज गसुन बस वाकस गसा हुआ अगज गसुन बस पहाड़स खसा बस उब्र पेटे असा दौरा हवा चु मे दौर नस पका ऐसी बातें तो सुनते हैं और सोशल मीडिया का दौर है तो क्या कहना बचा कुछ और है भैया आजकल हर एक दूसरे को एडवाइस देता है कि ये खाओ ये नहीं खाओ कॉफ़ी पीने से जहाँ सब बोलते हैं अच्छा होता है तो सब बोलते हैं कि कॉफ़ी बुरी चीज़ है जिसका जो मन करता है भैया फ्री इंटरनेट दे रखा है सरकार ने जो बोलना है बोलो लेकिन रेडियो चुनार की यही तो खास बात है कि मेरे यार आपका प्यार और हमारी सही इंफॉर्मेशन यानी इंफोटेनमेंट का डोज एवरी रोज जी हाँ सही इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और आज वही इंफॉर्मेशन लेकर फिर से हाजिर है आज का टॉपिक है इंडिया के बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स किसी को फॉलो करोगी तो

कुछ भी मिलेगा, कुछ भी दिखेगा, और अपने आप को कहीं तोड़ मरोड़ ना लेना मेरे भाई। या कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जिन्होंने अपना नाम, अपनी पहचान बनाई है, और सच में वो ऐसा डाटा, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी जिंदगी बेहतर नहीं, बेहतरीन हो जाएगी। इंडिया के बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स आज का टॉपिक। अगर आप भी किसी को जानते हैं कश्मीर में और यूर ऑन चोर, तो जो पता क्या इस्तेमाल बात नहीं, 8899900 नंबर। फिलहाल कुछ गाने आपके लिए, जी हाँ, करने के लिए आपको दीवाने, तो म्यूजिक बढ़ाना, सबको सुनाना, रेडियो चुना, हर दिल की धड़कन जोरों से धड़काना। मजेदार शो, वो सब मैं हूँ जगसी, धड़काते रह।

आपका वेलकम है हजरत, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

रेडियो चुनाव 90.4 एफएम अब सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप। मैं हूं आपका साथी जॉक ज्यूस। व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश टेक टॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। जी हां, बॉलीवुड की खबरों से लेकर टेक्स की दुनिया से अपडेट कुछ ही देर में आप तक पहुंचाए जाएंगे। यू स्टे हुक्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी। दरकाते रहो।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

That's the Radio Channel 90.4 FM show. What's up, Shoka segment, Bollywood News. जी हाँ, बॉलीवुड न्यूज में आइए बात करते हैं सबका भाई सबकी जान सलमान खान की. सलमान खान हैज अनाउंस इज कमिंग ऑन कॉफी विद करण ओपनिंग एपिसोड. कॉफी विद करण का लास्ट सीजन और आज यानी 14 अक्टूबर को बॉलीवुड के भाईजान आ रहे हैं कॉफी विद करण में. फैंस आर प्रेजिंग हिज प्रेजेंस एंड वेटिंग फॉर मोर. रिसेंटली भाईजान ने जो YouTube चैनल बनाया है वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. हॉट फ्रीक्वेंसी हल दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM. बने रहें, सुनते रहें, दरगाते रहें.

0: to Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Tech Talks
3: with RJ Zeus.
4: Radio 91.4 of him up in Joy Karim Mazdar Show. What's up, show man? Tech Talks में आइए बात करते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ ह्यूमनॉइड रॉबोट्स की. किस्सा है जर्मनी का, जहां पर एक रॉबोट पर लगा इल्जाम दैट ही inappropriately touched a 19-year-old girl. जिया रॉबर्ट इज accused of harassing a teenager girl in Germany. और ये किस्सा एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बाहर हुआ, जहां पर एक लड़की को हरास करने की खबर जब आई, पुलिस पहुंची तो पुलिस ने रॉबर्ट को सीज किया और दोनों फोन्स भी एज एन एविडेंस. अब इस पर जो है लोग बोल रहे हैं कि भैया ये तो अनहोनी है, ये तो कलयुग है, हाउ रॉबर्ट्स कैन एक्ट सच, बट इट इज व्हाट इट इज. AI की बूम कहीं ना कहीं रॉबर्ट्स को इतना विकसित कर रही है कि वो अपने आप से चीजें कर रहे हैं और खुद बिना सोचे बिना समझे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो कि इंसानों पर बारी पड़ सकते हैं. हर इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो 90.4 FM, मैं हूं जॉक्स, यू स्टे हुक्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी. मेरी जान धड़काते रहो.

0: प्रोड्यूस। कौन आया?
1: जी हाँ दोस्तों, आ गई है वो घड़ी जिसका इंतजार बिल्कुल भी नहीं रहता। इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ फॉर टुडे। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आपसे जुड़ने आ रही है आरजे दीवा लेकर शो चुनार बीट्स। Until we meet again, you keep your head high, walk tall, and always remember that I love you all. Bye bye, Tata, take care, Khushbash, Masalama.

यहाँ आ चुकी हूँ मैं आपके गले खड़ने, आपसे रही सारी बातें और ये वार्तालाप अभी तो बस शुरू हो चुका है। 91.4 रेडियो चुनार पर आगाज हो चुका है शो चुनार बीट्स का विद फुल ऑन वाइब एंड ट्राइब।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

निकल चुके गड्डी लेके, खासकर अगर आपने नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू कश्मीर पे ट्रैवल करना, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या है एडवाइजरी। 91.4 रेडियो चैनल पर आप एंजॉय कर रहे हैं उचना और बीट्स, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू कश्मीर। एंड अभी के लिए आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है विद क्लियर वेदर इन सेक्टर्स लाइक रामसू। थ्रू मूवमेंट रिमेन स्लो इन सर्टन एरियाज ड्यू टू सिंगल लेन स्ट्रेट्स बिकॉज वेदर कंडीशन के कारण। अगर हम देख रहे हैं कुछ दिनों से रोड की कंडीशन थोड़ा सा हमने सूझबूझ करके ही गाड़ी चलानी पड़ती है, एंड बी वेरी कॉशियस वाइल ड्राइविंग। तो ये भी ज़रूरी है कि हमें पता हो कि सिंगल लेन ट्रैफिक है, यानी कि आप वन वे ट्रैफिक ही अभी अपना सकते हैं, और आपने बाकी जो जानकारी वो आप TCU जम्मू, श्रीनगर एंड रामबन से बाकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप अपना प्लान उसी अकॉर्डिंग बना सकते हैं, सो दैट आपकी ट्रैवल में, यानी कि जहाँ आपने जाना है उसमें कोई भी रुकावट ना आए। अभी सोने का नहीं जागने का वक्त, और सुबह सुबह जब जाग जाता है ना इंसान, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है, यानी कि हमने क्या करना है आज, क्या चीज़ें हमने फॉलो करनी है। सो आपके लिए आप मुझे बताइए कि आप कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इग्नोर करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके साथ हमेशा साथ रहती है। तो छोड़ दीजिए आप अपनी आलस को, और ये सोच लीजिए कि वेदर भी काफ़ी अच्छा है। हाँ थोड़ी सी ठंड है, तो उसके उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने थोड़ा सा अपना थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना। अभी सर्दियाँ बढ़ने वाली है, तो भी अपने क्लोथ्स का भी ठीक ठाक ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए आपका जो भी ध्यान है वो भटक ना जाए, तो हम हैं यहाँ पर आपको सुना रहे हैं बैक टू बैक सॉन्ग्स ऑन योर हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 91.4 FM। मुझे बताना चाहते हैं और अपनी बात आगे पहुँचाना चाहते हैं, 8999 4904 पर कॉल कीजिए, टेक्स व्हाट्सएप कीजिए, और शो चुनाव बीच कैसा बन जाइए।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

देखिए, जो भी पूछना है तो आप बेझिझक होके और जानने के बगैर पूछ सकते हो। अब नंबर भी देखिए, ऐसा है ना कि जो आपको नंबर जोड़ के रखता है 0800-999-0404, टेक्स व्हाट्सएप करके आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। अब ये चीज़ है कि किसी की खूबसूरती डिफाइन करने के लिए हमें हर टाइम बोलना नहीं पड़ता है। समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें किसी एक इंसान के बारे में जिसे हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं और हमें पता है कि वो इंसान कैसा है, बट ये कि समटाइम्स पीपल ऑलवेज कंप्लेन अबाउट कि दैट आप हमारे

बारे में कुछ नहीं बोलते हो आप, अब बदल गए हो क्या? बट आई गेस कि इंसान जिस इंसान से इतना प्यार करता है कि जहाँ पर वर्ड्स कम पड़ जाते हैं तो जस्ट अंडरस्टैंड कि उनकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, और शायद वर्ड्स ही कम पड़ जाते हैं उन इंसान को डिफाइन करने के लिए कि वो हमारे ज़िंदगी में कितना ज़्यादा मैटर करते हैं। तो हर चीज़ दुनिया की खूबसूरत लगती है, और समटाइम्स व्हेन वी आर अपसेट एंड हमें लगता है कि हमारे जो पसंदीदा जो मर्द या फिर औरत हमारी ज़िंदगी में होते हैं, हमारे जो क्लोज लाउड वंस हमारे साथ होते हैं, माँ बाप, फ्रेंड्स, जिनसे भी हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि अपसेट की वजह से हमें लगता है कि शायद नहीं ये तो बदल गए हैं, या फिर कभी वर्ड्स हमें लगता है वो काफ़ी, बट जब कोई पॉज थोड़ा सा लगाए और फिर आपसे गुफ्तगू करना चाहे और आप उनके आंखों में देखें और आप समझ जाए कि इंसान कुछ तो छुपा रहे और ही बोलना भी चाहते, बट एक स्माइल आ जाए, बस समझ जाइए कि अगला सवाल करने की आपने ज़रूरत ही नहीं है। तो यही है कि जब हम किसी को समझे तो पूरे तरीके से समझे, ये ज़िंदगी ऐसी है कि इंसान सामने वाले इंसान को ना समझे तो फिर हर टाइम पे हम शिकायत या फिर तकलीफ़ों का सामना करते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है, थोड़ा समझना, एक दूसरे को टाइम देना है और अपने रिश्ते को और भी गहरा बनाना है। बात हो रही है शो चुनाव बीट्स, आप सुन रहे हैं ऑन योर रेडियो चुनाव 91.4 FM 88.9 0.4 9 0.4। आप जल्दी से कॉल कीजिए, मुझे बताइए वो इंसान आपकी ज़िंदगी में कौन है। खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते। अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे, बोलेंगे जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर, एवरी वेंसडे एंड सैटरडे, रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

इस चीज़ में भी कोई शक नहीं है कि मर्दों के बगैर इस समाज का होगा क्या. जैसे हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वेमेन एम्पावरमेंट, हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वेमेन एम्पावरमेंट से किस हद तक हमारी कंट्री को एक हम कह सकते हैं कि चेंज आ चुकी है, जहाँ हम वेमेन को एम्पावर कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है. बस ये है कि जब उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ता काफ़ी ईजी हो जाता है. तो वैसे ही औरतों के लिए भी सेम ही है कि जब वो मर्द का साथ देंगे तभी मर्द जो है वो कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है. सेम गोज़ टू दैट कि एक कामयाब औरत के पीछे एक कामयाब मर्द का हाथ होता है. सो इट्स वाइस वर्सा, बट नेसेसरी ये है कि मर्दों को भी ज़रूरत है इस समाज में वो कॉन्ट्रीब्यूशन उनके नाम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो मर्द हजरात है वो भी हमारे समाज में, उनके बगैर ये समाज, ये पूरी दुनिया मुमकिन नहीं है. सो वर्ल्ड विदाउट मैन, अगर एक मर्द ना हो तो क्या हो सकता है. अब ये भी नहीं है कि मेरे सर में दर्द है इसका कारण मर्द है. इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट. ये हम कह सकते हैं सोसाइटी में एक कुछ लोग होते हैं जो बस मर्द समाज को बदनाम करते हैं, एंड ऐसा ही है कि कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो औरत समाज को बदनाम करती. बट सेम गोज़ टू दैट कि हमने समझना है कि मर्द दर्द ही नहीं देते, मर्द समझते हैं, मर्द रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, और वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहते है कि ताकि हम आगे बढ़ पाए और लाइफ में कुछ खास कर पाए. सो आपके लिए ये सवाल है कि अगर मर्द ना हो तो इस समाज का होगा क्या. इट्स नॉट लाइक दैट कि दो एक समोसा दो कचौरी, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट कि मतलब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है जो कि जब हम ये नारे लगाते हैं कि एक कटोरी दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा, मेरे सर में दर्द है इसका कारण मर्द है. दिस इज़ नॉट समथिंग वी शुड अप्रिशिएट, वी शुड अंडरस्टैंड कि इट्स जस्ट फॉर फन पर्पज़ एंटरटेनमेंट. अदर देन दैट ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि मर्द के बगैर ये दुनिया मुमकिन नहीं है. आपको क्या लगता है शो कैसा बन जाए मुझे बताइए. 8999-0494 पर कॉल टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो जाए, बात कीजिए मेरे साथ ओनली ऑन रेडियो 91.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिन।

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

जी हाँ, अभी वक्त आ चुका है कि आप ही अपना टेलीफोन उठाए और डायल करें 8999 0494 व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाए। शो म्यूजिक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आप अपने फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं। बस आपने क्या करना है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इट्स 8999 0494 व्हाट्सएप करके आप शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन सकते हैं।

ईशा की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए ऑनियन शो म्यूजिक ऑन डिमांड रेडियो चुनाव 91.4 FM. आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8899-04904 पर व्हाट्सएप और कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट क्या है अभी, ऐसा कोई ट्रैक या फिर कोई ऐसी फेवरेट सी मैसेज जो आप अपनी फेवरेट पर्सन तक पहुँचाना चाहते हैं आज. तो जल्दी से 8899-04904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड कैसा बन जाए.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: प्यार इतना गहरा है ना कि हम कह सकते हैं ये अलग है, ये खूबसूरत है, क्योंकि ये शो ही ऐसा है जहाँ पर हम दोनों होते हैं और दोनों ही हम बात करते हैं अपनी प्यारी प्यारी लेडीज से. बट ये नहीं है कि आप वी आर सेइंग इट्स अ विमेन ओरिएंटेड शो और सिर्फ औरतों के लिए ही है, ये हर एक के लिए. यहाँ पर आप ओपिनियन अपने दे सकते हैं और हमारे लिसनर्स तक पहुँचा सकते. फ़िलहाल एक ऐसा इंसान जो कब से वेट कर रहा है, वो कहते हैं ना वो सोच में कहीं डूबा है, बट ये वलुर नहीं है और एक खजर भी नहीं है, ये है असरा.
1: वेरी वेरी नाइस रेफरेंस आई वुड से. देखिए, चाहे हम वुलर के किनारे बैठे हों या हम खजर हों या ना हों, हमें सोचना तो पड़ता है, बिकॉज देखिए ये ऐसा ही शो है जहाँ हमें सोचने की ज़रूरत है और लोग भी क्या सोचते हैं उसके बारे में भी बात.
0: बिल्कुल, बट कभी कभी मौसम में कहीं खो जाना और बिना ये चीज़ की पता हो कि हम क्या सोच रहे हैं, ये खो जाने की एक निशानी. अब मौसम भी इतना खूबसूरत है और उस पर असरा, ओह माय गॉड, इट्स लाइक क्या कह सकते हैं हम, इन मौसम का पूरा फील लेना. शो भी है तो अपनी एनर्जी को और भी बढ़ाना
1: बढ़ा सकते हैं. बट ऑनेस्टली अगर देखा जाए दीपा, सारे लोग ऐसे नहीं होते यार जिनको ये मौसम पसंद होता है.
0: हाँ,
1: मेरे जैसे लोग भी होते हैं जिनको ये मौसम बिल्कुल पसंद नहीं
0: है. हाँ, वो तो मुझे लग रहा है.
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मौसम तो पसंद नहीं है बट रेडियो गर्ल्स और आपका साथ तो बहुत ज्यादा पसंद है.
0: वो तो मुझे पता है, सुबह सुबह अरे यार सर्दियाँ आ गई, और कुछ लोग जो मेरी तरह होते हैं अरे यार सर्दियाँ आ गई. हमें दो पर्सपेक्टिव्स हैं, बट ये है कि आपको पर्सपेक्टिव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो आप बताइए, अभी हम बात कर रहे हैं गुड गर्ल्स सिंड्रोम के बारे में शो पे, शो और इस टॉपिक रिलेटेड आपके ओपिनियंस मैटर करते हैं, हम आगे पहुँचाएंगे. सो जल्दी से कॉल कीजिए. कॉल करने के लिए नंबर क्या है?
1: 8899049904 इज द नंबर. यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप और बन सकते हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हॉट हिस्सा.
0: बिल्कुल, तो जल्दी कीजिए, शो कैसा बन जाए. आप सुन रहे हैं हर दिल की धड़कन रेडियो चुना 91.4 FM.

0: देखिए दूर जाने का मेरा तो कोई इरादा नहीं है, बट हम आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं कि ठान लिया है रेडियो गर्ल्स में बात करनी है. और बात हो रही थी किस बारे में, असरा?
1: गुड गर्ल सिंड्रोम्स के बारे.
0: तो क्या होता है, हमारी लेडीज को कभी ना कभी कंफ्यूजन होता है कि क्या मतलब एक्स्ट्रा गुड होना, यानी कि अच्छा ज़्यादा दिखना, ये तो अच्छी बात है.
1: बट ये अच्छी बात नहीं होती है जब आप बहुत ज़्यादा पैलेटेबल हो जाते हैं, यानी कि आप हर चीज़ को हाँ करने लगते हैं, हर चीज़ में हाँ हाँ जी जी, और आप अपना पर्सपेक्टिव, अपनी बाउंड्री नहीं रखते हैं, तो आगे वाला इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेगा ही.
0: सो सिंपली यू मीन टू से कि कभी कभार जब हम हमेशा हाँ बोल जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम ना बोलना चाहते बट जाके भी नहीं बात. सो हमें एक अपनी इमेज बनानी होती कि सब बोले कि ये तो भाई बढ़िया लड़की है, पर ये चीज़ है कि उस चक्कर में हमारी मेंटल हेल्थ या फिर सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं कि फिर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है.
1: बिल्कुल. और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान आपको एक बढ़िया लड़की बोले, अच्छी लड़की बोले, बट ज़रूरी ये है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और आप किसी को हार्म किए बगैर अपनी बाउंड्री सामने रख सकते हैं. और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक इंसान, फिर एक खासकर एक लड़की जब अच्छा, एक अच्छा बिहेवियर ऑप्ट करना चाहती है, बट आगे लोग बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो बेहतर है कि आप पहले से ही अपनी बाउंड्री बनाएं ताकि कोई आपका इस्तेमाल ना करे.
0: बिल्कुल, बहुत ही सही बात है, क्योंकि आप जैसे आप वैसे ही खुद को प्रेजेंट करें. इट्स नॉट नेसेसरी हम फेक करते जाएंगे कि हमारी ये जो असल जो पर्सनालिटी है, हमारा जो एक सोल के साथ हमारा जो कनेक्शन होता है वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है जस्ट बिकॉज हम दूसरों को प्लीज करने में लग जाते हैं. सो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि अगर हम इम्परफेक्ट है और इम्परफेक्शन से ही एक इंसान जो है, मुझे लगता है कि अपने आगे वाले लाइफ में वो इम्परफेक्शंस को धीरे धीरे कम कर सकता है. ये नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट ही हो सकते, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है. सो फिलहाल के लिए परफेक्शन ही था ये कि हम बात कर रहे थे. टाइम थोड़ा परफेक्ट होता है हमारा, और टाइम से अभी ये भी है कि मुझे जाना है क्योंकि घड़ी ने किया है इशारा कि अभी है हंगामा का ये खेल सारा. और खेल ये है कि असरा है साथ, हंगामा है, ड्रामा. मैं तो जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखें. हमारी मुलाकात होगी कल 12 बजे. ख्याल रखिए और सुनते रहे रेडियो चुनाव 91.4 FM हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

अरे मुझे पता नहीं बप्पी लहरी को क्या याद आ रहा है, पर हमें ये याद आ रहा है कि अभी शुरुआत होने जा रही है शो हंगामा, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, क्या बजिंग है, लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है।

सेम फीलिंग है एकदम सेम टू सेम. आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं. अभी अभी शो शुरू हुआ है और हम बराबर 2 बजे से यूं तो शुरू करते हैं, बट वेंसडे और सैटरडे को स्पेशल रेडियो गर्ल्स शो होता है आपके लिए. और अभी की बात करें तो 2:30 से 4 आपका और मेरा साथ भरपूर रहेगा. बहुत सारी बातें होंगी, क्या चल रहा है, उसके अलावा जो भी टॉपिक रहता है, अपडेट्स रहते हैं, ट्रेंडिंग क्या है, 1 मिनट फैक्ट, देयर इज सो मच मोर टू इट. मैं मोस्टा सुनते रहिए रेडियो सुनार, और आते आते प्ले होता है कुछ खास कुछ क्रेजी. So this banger for you.

मैं तो समझ चुकी हूँ, अंडरस्टैंड हो चुका है एकदम की बैक टू बैक ट्रैक्स चलाना इम्पोर्टेंट है। सो ये ट्रैक आपके लिए और इसके बाद भी बहुत सारे ट्रैक्स, उसके बाद बात करेंगे कि आज क्या ट्रेंडिंग है मार्केट में। मैं हूँ अस्रा, सुन रही है रेडियो सुना 90.4 FM। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

बजल सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर शो चल रहा है हंगामा, जहाँ होता है ड्रामा और इन्फॉर्मेशन का डोज। हंगामा पे अभी हम बात करने जा रहे हैं कि क्या है ट्रेंडिंग, लोग क्या देखना सुनना रीपोस्ट शेयर स्टोरीज या लिप सिंकिंग डांस रील्स बनाना पसंद कर रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम है, एक्स है या है यूट्यूब। और सोशल मीडिया है ही ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी अगर बहुत 20 साल 30 साल पुराना गाना भी हो, इवन 50 साल पुराना गाना भी हो, या कोई भी ऐसा ट्रेंड हो, डायलॉग हो, कभी भी ट्रेंड कर सकता है, कभी भी लोग उसे रिक्रिएट करने की वो मस्ती में और वो मौज में उसे लोगों तक इस तरीके से लाइक रैपिड फायर ऐसे लोगों तक ये गाना पहुंचता है ना। और वैसी बात आज की है, एक सूफी ट्रैक है बट उसे एक 2016 के ट्रेंड के साथ जोड़ा जा रहा है और लड़कियां अपना पॉइंट ऑफ व्यू एकदम 2016 के अंदाज में विद द फिल्टर्स दैट वर यूज्ड इन 2016 अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई भी चीज़ लिटरली कोई भी रिलेटेड टू वर्ल्ड, रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, इवन पॉलिटिक्स, इस ट्रेंड का इस्तेमाल करके सामने आ रहा है।

0: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।
1: Yo, this next one is really special for me. Don't get tired. Give energy to get energy. You win.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। And this is the time for railway update. और आज की अगर update की बात करें, that is 272 kilometers on the उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एंड कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, मिनिमल जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस है उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुकी हैं, कम्प्लीट हो चुकी हैं। और अगर नॉर्मल जो भी लोकल सर्विसेज हैं, जो बारामूला बड़गाम बानीहाल संगलदन या बानीहाल रेलवे लिंक है के बारे में बात करें, तो ऑल द सर्विसेज आर एज पर द शेड्यूल, एज पर द समर टाइम टेबल। और

कुछ दिनों के बाद ये कहा भी जा रहा है कि जो समर टाइम टेबल है वो विंटर टाइम टेबल स्केड्यूल किया जाएगा और सारे लोकल जो सर्विसेज हैं वो विंटर टाइम टेबल के हिसाब से होंगे. जब तक वो नहीं होता तब तक समर टाइम टेबल है एंड यू कैन अवेल द टाइम टेबल ऑफलाइन रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर भी. और उसके अलावा आप रेल वन ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप से सिर्फ और सिर्फ कश्मीर रेलवे लिंक के बारे में नहीं बल्कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान, पूरे के पूरे इंडियन रेलवे के बारे में जान सकते हैं. और जो वंदे भारत है उनकी टिकट्स भी अवेलेबल होती हैं बट तत्काल में नहीं बल्कि यू हैव टू प्रायर प्लान इट एंड गो फॉर द टिकट बुकिंग बिकॉज वेटिंग लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है. अगर अभी की बात करें तो विंटर्स में भी काफ़ी सारे टूरिस्ट कश्मीर आते हैं उस वजह से भी. और उसके अलावा अगर बात करें जो गुड्स के लिए यानी कि सामान के लिए जो ट्रेन्स कोचेज बनाए गए हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट है उनमें क्योंकि कश्मीरी एप्पल्स, चेरीज, वॉलनट्स, प्लम्स की बात करें या सैफरन की बात करें तो काफ़ी सारा जो बाकी स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है कश्मीर से चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, सिर्फ और सिर्फ 30 घंटे लगते हैं. पहले तो काफ़ी ज़्यादा रिलायंस थी जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अभी की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो गुड्स है मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल है वो ट्रेन्स के थ्रू ट्रैवल हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है. सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर पीपल हु एक्चुअली अर्न बाय मैन्युफैक्चरिंग या फार्मर्स है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है. मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम. अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो 8899904904 इज नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम.

बदुआ लेंगे, मुझे लगता है कि एवी बदुआ लेंगे, अपने साफ हाथ गंदे करा लेंगे, मुझे छोड़ के जाने वाले जा, छोड़ दिया तुझको, जिसका मरा हुआ जमीर हम उसको मार के क्या लेंगे।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

देखिए मिलके तो हम बैठे थे बराबर 4 तक, अभी 4 बजने वाले हैं और आपका और मेरा साथ यहीं तक था। अभी आपका हाथ छोड़ रही हूँ पर कल वापस आऊंगी करने आप सबको एंटरटेन। 2 से लेकर 4 तक शो हंगामा होता है, ड्रामा एंटरटेनमेंट के व्हाट नॉट। मैं हूँ असरा और जाते जाते हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए, मेमोरीज बनाते रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। एंड लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल और अनप्रडिक्टेबल से ज़्यादा किसी को फिगर्ड आउट नहीं है कि ज़िंदगी में करना क्या है। हर किसी इंसान को दूसरे की जो ज़िंदगी है वो बेहतर लगती है, लगता है कि भाई शायद इसको सब फिगर्ड आउट है, बट किसी को कुछ पता नहीं है। Nobody knows nothing. So take care of yourself and enjoy your life to the fullest. मैं हूँ आसरा, आज के लिए बस इतना ही। Signing off for today. Over and out.

0: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: मैं हूं आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: I can't wait because she has absolutely no idea. Let's go.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Channel 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: story.
1: Hi, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM.
2: ओ मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना.
3: कुछ और मांग लेना. मोटरसाइकिल नहीं
4: दिला दीजिए ना.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: चलो जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट।
0: ओके तुम्हारी, मैं जाऊं। लगता है रूम में रह गया।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4 FM।

money!

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

जिगर, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, एक बात लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ,

कष्टी चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।

0: ओ सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: ए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: किशोर बचाओ, ओ मुए, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी, ओ नटखट, ओ खटपट, ओ पनघट, ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे

Ah.

0: के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, तारा रा रा रा, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आहा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आहा। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ना यूं ही साथी
1: भाई बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: दे।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।